0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत कलीसिया में महिला धर्म संघों के सुसमाचार प्रचार के नए तरीके पर चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय था जब संचार माध्यमों एवं नई तकनीकी उपकरणों का प्रयोग दुनियादारी समझी जाती थी और धर्म संघी उनसे दूरी रखने का प्रयास करते थे, लेकिन नई तकनीकियों के तेजी से विकास के साथ अब मनोभाव बदलने लगा है। अब उनसे दूर रहने के बजाय धर्म संघी भी उनका प्रयोग सुसमाचार प्रचार में करने लगे हैं। इससे फायदा यह हो रहा है कि उन लोगों तक भी ख्रिस्त की ज्योति फैलाई जा सकती है जो कलीसिया से दूर हैं। तंजानिया में उसंबरा की माता मरियम की धर्म बहनें उन धर्म संघियों में से एक हैं जो सुसमाचार प्रचार के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। टेलीविजन और सोशल नेटवर्क के जरिए धर्म बहनें सुसमाचार साझा करती, युवाओं को जोड़ती और कार्तिक विश्वास के बारे सवालों का जवाब देती हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है उसंबरा की माता मरियम की धर्म बहनों के नए मिशन पर एक चर्चा, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्के। उसंबरा की माता मरियम की धर्म बहनों के धर्म संघ की स्थापना रोज मिलियन फादर्स के मॉन्सिनियर यूजेन आर्थर ने 1954 में की थी। यह एक धर्म प्रांत धर्म संघ है जिसकी मुख्य प्रेरिताएं हैं सुसमाचार प्रचार एवं शिक्षा देना। 1958 में मॉन्सिनियर आर्थर तांगा कार्तिक धर्म प्रांत के पहले बिशप बने। धर्म बहनों का प्रशिक्षण शुरू में मूल्यवान रक्त की मिशनरी धर्म बहनों के द्वारा किया जाता था और उनकी पहली सुपीरियर जनरल सिस्टर विलिंटा गिस्बर्स थी। धर्म संघ ने अपना मिशन रंगवी में शुरू किया। समय के साथ धर्म बहनों ने किंडरगार्टन से लेकर कॉलेज तक सभी स्तर पर शिक्षा के साथ साथ धर्म शिक्षा एवं युवाओं को तैयार करने पर ध्यान दिया। बदलते समय के हिसाब से धर्म बहनों ने संचार के आधुनिक उपकरणों से लोगों तक पहुंचने की जरूरत को समझा। इसी कारण से जुलाई 2024 में तांगा इलाके के लुशुटो उसंबरा माउंटेन टीवी या UMTV शुरू हुआ। इस पहल का मुख्य मकसद ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करना है जो सुसमाचार प्रचार, शिक्षा एवं विश्वास के मुद्दों पर बातचीत का समर्थन करें। UMTV की डायरेक्टर सिस्टर पॉलिना टी मशाना ने कहा, टेलीविजन और इंटरनेट के जरिए हम अपने आसपास के समुदायों से कहीं आगे के लोगों तक पहुंच पाते हैं। इसे सुसमाचार प्रचार करने और लोगों, खासकर युवाओं को ईश्वर को और अधिक जानने एवं उनसे प्यार करने के लिए बढ़ावा देने के हमारे मिशन को मजबूती मिलती है। बहुत से युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और YouTube के जरिए UMTV को फॉलो करते हैं, जहां चैनल युवाओं, विश्वास एवं सामाजिक मुद्दों पर फोकस करने वाले प्रोग्राम दिखाता है। वहीं डॉन बोस्को की आध्यात्मिकता से प्रेरित पहल भी शामिल है। UMTV कई तरह से कार्यक्रम प्रसारित करता है जिसमें धर्म शिक्षा, विश्वास पर चिंतन और युवाओं एवं समाज पर चर्चा शामिल है। इन प्रयासों के द्वारा धर्म बहनें अपनी कैरिज्म एवं मिशन को ऐसे मीडिया माहौल में ज्यादा दिखाने की कोशिश करती हैं जो दैनिक जीवन को तेजी से बदल रहा है। लॉन्च होने के बाद से यह प्लेटफॉर्म स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर ऑनलाइन, युवाओं के बीच बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका है। यह बढ़ता जुड़ाव ऐसी सामग्री की चाहत को दिखाता है जिसमें शिक्षा, चिंतन एवं पहुंच योग्य संचार शामिल हों। सिस्टर पॉलिना कहती हैं कि मीडिया में काम करने से धर्म संघ उन समुदायों तक पहुंच पाता है जहां वे शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा, मुझे इस काम में शामिल होकर खुशी हो रही है, भले ही बहुत से लोग अब भी सोचते हैं कि कैमरा चलाना मर्दों का काम है। धर्म बहनें भी यह भूमिका निभा सकती हैं और बड़े समुदाय तक सुसमाचार पहुंचा सकती हैं। इसमें कलीसिया के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर काम करने से भी फायदा हुआ है। UMTV के सहयोगियों में से एक ब्रदर लुकास मसासी OFM कैप ने विश्वास पर आधारित सामग्री को बढ़ावा देने और अलग अलग स्तर पर सीखने में मदद करने में इस परियोजना की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने एक सिंपल YouTube चैनल से लेकर एक टेलीविजन प्लेटफॉर्म तक इसके विकास पर ध्यान दिया।
अपने कार्यक्रमों के द्वारा UMT भी स्थानीय समुदाय में शिक्षा में योगदान दे रहा है और संस्कृति, संगीत, आध्यात्मिकता और बुनियादी जीवन शैली जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है जिससे घर बैठे भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे नए प्रयासों की तरह UMTV को भी व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमित संसाधन और पैसे की कमी की वजह से दैनिक प्रोडक्शन मुश्किल हो जाता है, जबकि भरोसेमंद इंटरनेट तक पहुंच और डिजिटल डिवाइस की कीमत कई दशकों के लिए रुकावटें बनी हुई हैं। बिजली चले जाने से भी प्रसारण के नियमित होने पर असर पड़ता है। इसके अलावा धम्मसंघ के सभी सदस्य सुसमाचार प्रचार के लिए मीडिया की अहमियत को नहीं पहचान पाते, जिसके लिए समुदाय में लगातार जानकारी और जागरूकता की जरूरत होती है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद धम्म बहने मीडिया को प्रचार एवं ट्रेनिंग के लिए एक प्रमुख जगह के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका लक्ष्य ज्यादा लोगों तक पहुंचना और युवाओं को अर्थ एवं विश्वास की तलाश में डिजिटल उपकरण के साथ ज्यादा जागरूक होकर जुड़ने में मदद करना है। सुसमाचार के शब्दों से प्रेरित होकर, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। धम्म बहने टेलीविजन, सोशल मीडिया एवं शैक्षणिक सामग्री के द्वारा मसीह को बताने का अपना मिशन जारी रख रहे हैं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत उसम्बरा की माता मरियम की धम्म बहनों का मीडिया के माध्यम से सुसमाचार प्रचार के कार्य पर चर्चा सुन रहे थे, जिसको सिस्टर एर्नेस्टिना पैट्रिक लास्वे SAC और सिस्टर क्रिस्टीना मसीवो CPS ने लिखा है। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका बेटी का सुख। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, विवाह के पश्चात हर लड़की के माता पिता की यही इच्छा रहती है कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे और उसे उसके ससुराल में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके घर में सुख शांति बनी रहे और उसके ससुराल के सभी सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बने और उसे दाम्पत्य जीवन का सुख मिले। बेटी के माता पिता को ससुराल के छोटे मोटे विवाद को खुद सुलझाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि बेटी जब मायका आती है तो माता जी एक एक करके ससुराल के सब सदस्यों के बारे में पूछना शुरू कर देती है और हर एक का कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही लेती हैं। ससुराल में सास ससुर जेठ ननद देवर के साथ मिलकर रहने की बजाय अपनी अलग घर गृहस्थी शुरू करने के लिए दबाव डालती है। अगर शुरू में ही उनकी दखल अंदाजी को रोका ना गया तो ऐसी माताएं जाने अनजाने अपनी बेटी के अच्छे भले घर के सुख चैन को बर्बाद कर देती हैं। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में ऐसी माताओं का मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका बेटी का सुख।
1: हाँ शीतल बेटी, आ यहाँ बैठ। अरे सुबह की आई है बेटी तू, अब फुर्सत मिली है तेरे साथ बैठने और बातें करने के लिए। और सुना, तेरे वहाँ ससुराल में सब कैसे हैं?
2: सभी अच्छे से हैं माँ।
1: और दामाद के क्या हाल हैं? ठीक ठाक तो हैं?
2: वो भी ठीक है माँ, उनका काम भी अच्छा चल रहा है। अभी प्रमोशन के लिए उनका ही नाम आया है, शायद अगले महीने तक उनका प्रमोशन भी हो जाएगा।
1: चल अच्छा है बेटी। और तेरे देवर का क्या हाल है? कहीं काम धंधे से लगा या अभी भी बड़ी बड़ी बातें करता हुआ घूम फिर कर टाइम पास कर रहा है?
2: नरेन भाई का तो अभी भी वही चल रहा है माँ, न घर की दुकान देखते हैं और ना ही कहीं और कोई काम धंधा चल रहा है उनका।
1: देख बेटी, सच बताऊं तो नरेंद्र को बिगाड़ने वाली उसकी माँ ही है, मतलब तेरी सास। उसी ने सिर चढ़ा रखा है नरेंद्र को, ये काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है, और ना ही उसे दुकान पर बैठने के लिए कहती है।
2: अरे माँ, अगर नरेंद्र भाई दुकान पर भी बैठे ना तो समझो दुकान का तो तिया पाचा ही कर देते हैं वो।
1: तिया पाचा कर देता है वो? कैसे? जरा मैं भी तो सुनूं।
2: अरे माँ, दुकान के गल्ले से पैसे उड़ाते तो उड़ाते हैं, अपने मिलने जुलने वाले को खूब उधार भी दे देते हैं। बाबूजी भी परेशान हो गए उनसे, इसलिए जेठ जी और बाबूजी भी दुकान पे बैठते हैं अब।
1: ओहो, तो अब तेरा देवर घर में ही हाथ की सफाई भी बताने लगा है? बढ़िया बढ़िया खबर सुनाई है तूने। घमंडी लोगों के घर को उनका भेदी ही ढाता है। और वो तेरे जेठ जेठानी के क्या हाल है? तेरे जाने से तेरी जेठानी के तो मजे हो गए होंगे।
2: नहीं माँ, जेठानी जी भी बहुत अच्छी हैं, अक्सर ही घर के कामों में मेरा हाथ बटाती रहती हैं। माँ जी तो उनको बहुत मना करती हैं कि बहू तू तब तक दूसरे काम देख ले, मगर वो
1: हाँ, मतलब तेरी सास चाहती है कि तू अकेले ही सारा काम किया करे, तुझे दम मारने की भी फुर्सत ना मिले, क्यों?
2: हाँ माँ, अब माँ जी के कहने से तो लगता ही यही है।
1: अरे क्या बात करती है तू, लगता क्या है, बात ही यही है। वरना तेरी सास को क्या पड़ी है तुम लोगों के काम में दखल देने की? उसे तो घर का काम चाहिए ना, वो होता तो है, वो बैठी रहे पटरानी की तरह, उसका काम तो हो रहा है ना।
2: हाँ ये बात तो है माँ, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं वो झट से आकर जेठानी से यही कहती है, बड़ी बहू ये रहने दे, ये कर लेगी, तू दूसरा काम कर ले, दूसरा देख ले।
1: वही तो मैं कह रही हूँ, जरा सोच वो ऐसा क्यों करती है। उसने भी बड़े बेटे और बहू को सिर चढ़ा रखा है, क्योंकि बड़ा बेटा ही तो बाप के साथ घर की दुकान में हाथ बटाता है और सब कुछ माँ के हाथ पर रखता है, तो ऐसे में बड़े बेटे बहू का ख्याल तो रखेगी ही ना वो।
2: हाँ माँ।
1: और तेरा पति मतलब दामाद अपनी नौकरी करता, अपना खाता कमाता है, वो तो तेरी सास को अखरता होगा।
2: ये बात तो होगी।
1: और तेरा जेठ, वो तेरे साथ कैसे रहता है?
2: वो तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। कोई काम की बात हो तो ही बोलते हैं वो, वरना तो चुप ही रहते हैं।
1: क्यों शीतल, ये भी तो हो सकता है कि वो तुझसे बात ही नहीं करना चाहता हो, वो और उसकी औरत।
3: हाँ दीदी, कैसी हो तुम? अब सुनाओ।
2: पायल आ बैठ, मैं तो अच्छी हूँ, तू सुना, तू कैसी है और तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है?
3: मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और मैं भी अच्छी हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल में कैसी बीत रही है?
2: हाँ अच्छी बीत रही है यार।
1: अरे काहे की अच्छी बीत रही है, मुझे क्या पता नहीं है, और चाहे तो तू खुद शीतल के मुंह से सुन ले।
3: ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? मैं बहुत देर से पड़ोस के कमरे से यहाँ आंगन में होने वाली आप दोनों की बातें सुन रही थी। माँ, क्यों आप अपनी ही बेटी के सुखद जीवन में आग लगाने पर तुली हुई हो? क्यों अपनी बेटी को ससुराल में चैन से जीने नहीं देना चाहती हो?
1: अरे पहले तू खुद ही शीतल से पूछ ले कि वो ससुराल में किस तरह से रहती है। मैं तो कहती हूँ बेटी, अगर तुम्हें सचमुच में सुखी रहना है तो दामाद के साथ अलग रहने लग, तभी तू सुखी रहेगी।
3: माँ कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आप अपनी ही बेटी को गलत सलाह दे रही हैं। मैं कब से सुन रही हूँ दीदी अपने ससुराल वालों की तारीफ भी करती है, तो आप जबरदस्ती उनके किसी न किसी व्यवहार में कोई न कोई कमी बताकर उसे दोषी सिद्ध करने पर तुली हुई दिखाई देती हैं।
1: अब मैं अपने मन से तो कुछ नहीं कह रही हूँ, जो शीतल से सुन रही हूँ उसी आधार पर तो कुछ कह रही हूँ ना।
3: शीतल दीदी जो भी कह रही हैं, आप उसको अपने गंदे विचार से दबाव डालकर अपने नजरिए से वही दिखा और बता रही हैं जो आप देख रही हैं और जो आप चाहती हैं।
2: पायल रहने दे, शायद माँ ठीक कहती हैं।
3: क्या ठीक कह रही हैं दीदी, मैं जब से सुन रही हूँ माँ कभी तुम्हारी सास की बुराई करती है, कभी तुम्हारे देवर की बुराई करती है, तो कभी जेठ जेठानी की। वो तो मैं आ गई, वरना इन्होंने तो तुम्हारे संत जैसे ससुर को भी नहीं छोड़ना था। ये उनकी उनकी भी बुराई करने में कोई कोताही नहीं बरतती।
1: देख पायल, अब मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी बेटी के ससुराल वालों के विरुद्ध अपनी ही बेटी के कान भरूंगी।
4: मैं भी बहुत देर से तुम्हारी बुराई पुराण सुन रहा था सावित्री। शाबाश पायल बेटी, तुमने अपनी माँ को उसकी गलती बताई। मेरे तो समझ में नहीं आता सावित्री कि तुम अपनी ही बेटी के कान भरकर उसके सुखद भविष्य में क्यों खलल पैदा कर रही हो।
1: अरे मैं तो बस
4: तुम्हारे जैसी माएँ ही अपनी बेटियों के ससुराल और परिवार में दखल देती हैं और उनके अच्छे भले चलते शांत जीवन के पानी में बुराई का कंकर फेंक कर हलचल पैदा कर देती हैं, और जब प्रतिक्रिया स्वरूप बेटी के ससुराल से कोई कुछ कहता है तो तुम जैसी माएँ ही फिर कहती हैं कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, तेरे ससुराल वाले ऐसे ही हैं।
2: पापा माँ तो ऐसे ही कह रही थी, आप भी ना।
4: इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसे नहीं कही जाती बेटी। माँ अगर सचमुच में अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हैं तो उन्हें अपनी बेटियों को अपने ससुराल में तनकर रहने की शिक्षा देने और कहीं अलग गृहस्थी बसाने की सलाह देने के बजाय ससुराल में ही सबसे मिलकर रहने और हमेशा वहीं संयुक्त परिवार में ही रहने की शिक्षा देनी चाहिए।
1: मैं आपकी बात समझ गई। दरअसल मैं अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी ना कि अपनी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचने की तमीज़ भी खो बैठी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए।
4: इसमें माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं है, और अगर माफ़ी मांगनी ही है तो अपनी बेटी से माफ़ी मांगो। उसे शिक्षा देनी ही है तो सास ससुर जेठ जेठानी का आदर करने की शिक्षा दो, देवर ननन देवरानी को प्यार से साथ में रखने की सीख दो।
3: यही तो मैं भी चाहती हूँ पापा।
1: ठीक है, अब मैं भी वही करूँगी जो तुम सब चाहते हो। मैं तो सचमुच तुझे सुखी देखना चाहती हूँ शीतल बेटी।
2: हाँ माँ।
0: बेटी का सुख। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अपर्णा सिंह, अंतरा करवड़े, आस्था उपमन्यु और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार्य कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत कलीसिया में महिला धर्म संघों के सुसमाचार प्रचार के नए तरीके पर चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय था जब संचार माध्यमों एवं नई तकनीकी उपकरणों का प्रयोग दुनियादारी समझी जाती थी और धर्म संघी उनसे दूरी रखने का प्रयास करते थे, लेकिन नई तकनीकियों के तेजी से विकास के साथ अब मनोभाव बदलने लगा है। अब उनसे दूर रहने के बजाय धर्म संघी भी उनका प्रयोग सुसमाचार प्रचार में करने लगे हैं। इससे फायदा यह हो रहा है कि उन लोगों तक भी ख्रिस्त की ज्योति फैलाई जा सकती है जो कलीसिया से दूर हैं। तंजानिया में उसंबरा की माता मरियम की धर्म बहनें उन धर्म संघियों में से एक हैं जो सुसमाचार प्रचार के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। टेलीविजन और सोशल नेटवर्क के जरिए धर्म बहनें सुसमाचार साझा करती, युवाओं को जोड़ती और कार्तिक विश्वास के बारे सवालों का जवाब देती हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है उसंबरा की माता मरियम की धर्म बहनों के नए मिशन पर एक चर्चा, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्के। उसंबरा की माता मरियम की धर्म बहनों के धर्म संघ की स्थापना रोज मिलियन फादर्स के मॉन्सिनियर यूजेन आर्थर ने 1954 में की थी। यह एक धर्म प्रांत धर्म संघ है जिसकी मुख्य प्रेरिताई है सुसमाचार प्रचार एवं शिक्षा देना। 1958 में मॉन्सिनियर आर्थर तांगा कार्तिक धर्म प्रांत के पहले बिशप बने। धर्म बहनों का प्रशिक्षण शुरू में मूल्यवान रक्त की मिशनरी धर्म बहनों के द्वारा किया जाता था और उनकी पहली सुपीरियर जनरल सिस्टर विलिंडा गिसबर्स थी। धर्म संघ ने अपना मिशन रंगवी में शुरू किया। समय के साथ धर्म बहनों ने किंडरगार्टन से लेकर कॉलेज तक सभी स्तर पर शिक्षा के साथ साथ धर्म शिक्षा एवं युवाओं को तैयार करने पर ध्यान दिया। बदलते समय के हिसाब से धर्म बहनों ने संचार के आधुनिक उपकरणों से लोगों तक पहुंचने की जरूरत को समझा। इसी कारण से जुलाई 2024 में तांगा इलाके के लुशुटो उसंबरा माउंटेन टीवी या UMTV शुरू हुआ। इस पहल का मुख्य मकसद ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करना है जो सुसमाचार प्रचार, शिक्षा एवं विश्वास के मुद्दों पर बातचीत का समर्थन करें। UMTV की डायरेक्टर सिस्टर पॉलिना टी मशाना ने कहा, टेलीविजन और इंटरनेट के जरिए हम अपने आसपास के समुदायों से कहीं आगे के लोगों तक पहुंच पाते हैं। इसे सुसमाचार प्रचार करने और लोगों, खासकर युवाओं को ईश्वर को और अधिक जानने एवं उनसे प्यार करने के लिए बढ़ावा देने के हमारे मिशन को मजबूती मिलती है। बहुत से युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और YouTube के जरिए UMTV को फॉलो करते हैं, जहां चैनल युवाओं, विश्वास एवं सामाजिक मुद्दों पर फोकस करने वाले प्रोग्राम दिखाता है। वहीं डॉन बोस्को की आध्यात्मिकता से प्रेरित पहल भी शामिल है। UMTV कई तरह से कार्यक्रम प्रसारित करता है जिसमें धर्म शिक्षा, विश्वास पर चिंतन और युवाओं एवं समाज पर चर्चा शामिल है। इन प्रयासों के द्वारा धर्म बहनें अपनी कैरिज्म एवं मिशन को ऐसे मीडिया माहौल में ज्यादा दिखाने की कोशिश करती हैं जो दैनिक जीवन को तेजी से बदल रहा है। लॉन्च होने के बाद से यह प्लेटफॉर्म स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर ऑनलाइन, युवाओं के बीच बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका है। यह बढ़ता जुड़ाव ऐसी सामग्री की चाहत को दिखाता है जिसमें शिक्षा, चिंतन एवं पहुंच योग्य संचार शामिल हों। सिस्टर पॉलिना कहती हैं कि मीडिया में काम करने से धर्म संघ उन समुदायों तक पहुंच पाता है जहां वे शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा, मुझे इस काम में शामिल होकर खुशी हो रही है, भले ही बहुत से लोग अब भी सोचते हैं कि कैमरा चलाना मर्दों का काम है। धर्म बहनें भी यह भूमिका निभा सकती हैं और बड़े समुदाय तक सुसमाचार पहुंचा सकती हैं। इसमें कलीसिया के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर काम करने से भी फायदा हुआ है। UMTV के सहयोगियों में से एक ब्रदर लुकास मसासी OFM कैप ने विश्वास पर आधारित सामग्री को बढ़ावा देने और अलग अलग स्तर पर सीखने में मदद करने में इस परियोजना की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने एक सिंपल YouTube चैनल से लेकर एक टेलीविजन प्लेटफॉर्म तक इसके विकास पर ध्यान दिया। अपने कार्यक्रमों के द्वारा UMTV स्थानीय समुदाय में शिक्षा में योगदान दे रहा है और संस्कृति, संगीत, आध्यात्मिकता और बुनियादी जीवन शैली जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है
जिसे घर बैठे भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे नए प्रयासों की तरह यूएमटीबी को भी व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमित संसाधन और पैसे की कमी की वजह से दैनिक प्रोडक्शन मुश्किल हो जाता है, जबकि भरोसेमंद इंटरनेट तक पहुंच और डिजिटल डिवाइस की कीमत कई दशकों के लिए रुकावटें बनी हुई हैं। बिजली चले जाने से भी प्रसारण के नियमित होने पर असर पड़ता है। इसके अलावा धम्मसंघ के सभी सदस्य सुसमाचार प्रचार के लिए मीडिया की अहमियत को नहीं पहचान पाते, जिसके लिए समुदाय में लगातार जानकारी और जागरूकता की जरूरत होती है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद धम्म बहनें मीडिया को प्रचार एवं ट्रेनिंग के लिए एक प्रमुख जगह के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका लक्ष्य ज्यादा लोगों तक पहुंचना और युवाओं को अर्थ एवं विश्वास की तलाश में डिजिटल उपकरण के साथ ज्यादा जागरूक होकर जुड़ने में मदद करना है। सुसमाचार के शब्दों से प्रेरित होकर, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। धम्म बहनें टेलीविजन, सोशल मीडिया एवं शैक्षणिक सामग्री के द्वारा मसीह को बताने का अपना मिशन जारी रख रही हैं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत उसम्बरा की माता मरियम की धम्म बहनों का मीडिया के माध्यम से सुसमाचार प्रचार के कार्य पर चर्चा सुन रहे थे, जिसको सिस्टर एर्नेस्टिना पैट्रिक लास्वे SAC और सिस्टर क्रिस्टीना मसीवो CPS ने लिखा है। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका बेटी का सुख। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, विवाह के पश्चात हर लड़की के माता पिता की यही इच्छा रहती है कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे और उसे उसके ससुराल में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उसके घर में सुख शांति बनी रहे और उसके ससुराल के सभी सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बने और उसे दाम्पत्य जीवन का सुख मिले। बेटी के माता पिता को ससुराल के छोटे मोटे विवाद को खुद सुलझाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि बेटी जब मायका आती है तो माता जी एक एक करके ससुराल के सब सदस्यों के बारे में पूछना शुरू कर देती है और हर एक का कुछ न कुछ नुक्स निकाल ही लेती हैं। ससुराल में सास ससुर जेठ ननद देवर के साथ मिलकर रहने की बजाय अपनी अलग घर गृहस्थी शुरू करने के लिए दबाव डालती है। अगर शुरू में ही उनकी दखल अंदाजी को रोका न गया तो ऐसी माताएं जाने अनजाने अपनी बेटी के अच्छे भले घर के सुख चैन को बर्बाद कर देती हैं। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में ऐसी माताओं का मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका बेटी का सुख।
1: हाँ शीतल बेटी, आ यहाँ बैठ। अरे सुबह की आई है बेटी तू, अब फुर्सत मिली है तेरे साथ बैठने और बातें करने के लिए। और सुना, तेरे वहाँ ससुराल में सब कैसे हैं?
2: सभी अच्छे से हैं माँ।
1: और दामाद के क्या हाल हैं? ठीक ठाक तो हैं?
2: वो भी ठीक है माँ, उनका काम भी अच्छा चल रहा है। अभी प्रमोशन के लिए उनका ही नाम आया है, शायद अगले महीने तक उनका प्रमोशन भी हो जाएगा।
1: चल अच्छा है बेटी। और तेरे देवर का क्या हाल है? कहीं काम धंधे से लगा या अभी भी बड़ी बड़ी बातें करता हुआ घूम फिर कर टाइम पास कर रहा है?
2: नरेन भाई का तो अभी भी वही चल रहा है माँ, न घर की दुकान देखते हैं और ना ही कहीं और कोई काम धंधा चल रहा है उनका।
1: देख बेटी, सच बताऊं तो नरेंद्र को बिगाड़ने वाली उसकी माँ ही है, मतलब तेरी सास। उसी ने सिर चढ़ा रखा है नरेंद्र को, ये काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है, और ना ही उसे दुकान पर बैठने के लिए कहती है।
2: अरे माँ, अगर नरेंद्र भाई दुकान पर भी बैठे ना तो समझो दुकान का तो तिया पाचा ही कर देते हैं वो।
1: तिया पाचा कर देता है वो? कैसे? जरा मैं भी तो सुनूं।
2: अरे माँ, दुकान के गल्ले से पैसे उड़ाते तो उड़ाते हैं, अपने मिलने जुलने वाले को खूब उधार भी दे देते हैं। बाबूजी भी परेशान हो गए उनसे, इसलिए जेठ जी और बाबूजी भी दुकान पे बैठते हैं अब।
1: ओहो, तो अब तेरा देवर घर में ही हाथ की सफाई भी बताने लगा है? बढ़िया बढ़िया खबर सुनाई है तूने। घमंडी लोगों के घर को उनका भेदी ही ढाता है। और वो तेरे जेठ जेठानी के क्या हाल हैं? तेरे जाने से तेरी जेठानी के तो मजे हो गए होंगे।
2: नहीं माँ, जेठानी जी भी बहुत अच्छी हैं, अक्सर ही घर के कामों में मेरा हाथ बटाती रहती हैं। माँ जी तो उनको बहुत मना करती हैं कि बहू तू तब तक दूसरे काम देख ले, मगर वो
1: हाँ, मतलब तेरी सास चाहती है कि तू अकेले ही सारा काम किया करे, तुझे दम मारने की भी फुर्सत ना मिले, क्यों?
2: हाँ माँ, अब माँ जी के कहने से तो लगता ही यही है।
1: अरे क्या बात करती है तू, लगता क्या है, बात ही यही है। वरना तेरी सास को क्या पड़ी है तुम लोगों के काम में दखल देने की? उसे तो घर का काम चाहिए ना, वो होता तो है, वो बैठी रहे पटरानी की तरह, उसका काम तो हो रहा है ना।
2: हाँ ये बात तो है माँ, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं वो झट से आकर जेठानी से यही कहती है, बड़ी बहू ये रहने दे, ये कर लेगी, तू दूसरा काम कर ले, दूसरा देख ले।
1: वही तो मैं कह रही हूँ, जरा सोच वो ऐसा क्यों करती है। उसने भी बड़े बेटे और बहू को सिर चढ़ा रखा है, क्योंकि बड़ा बेटा ही तो बाप के साथ घर की दुकान में हाथ बटाता है और सब कुछ माँ के हाथ पर रखता है, तो ऐसे में बड़े बेटे बहू का ख्याल तो रखेगी ही ना वो।
2: हाँ माँ।
1: और तेरा पति मतलब दामाद अपनी नौकरी करता अपना खाता कमाता है, वो तो तेरी सास को अखरता होगा।
2: ये बात तो होगी।
1: और तेरा जेठ, वो तेरे साथ कैसे रहता है?
2: वो तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। कोई काम की बात हो तो ही बोलते हैं वो, वरना तो चुप ही रहते हैं।
1: क्यों शीतल, ये भी तो हो सकता है कि वो तुझसे बात ही नहीं करना चाहता हो, वो और उसकी औरत।
3: हाँ दीदी, कैसी हो तुम? अब सुनाओ।
2: पायल आ बैठ, मैं तो अच्छी हूँ, तू सुना, तू कैसी है और तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है?
3: मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और मैं भी अच्छी हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल में कैसी बीत रही है?
2: हाँ अच्छी बीत रही है यार।
1: अरे काहे की अच्छी बीत रही है, मुझे क्या पता नहीं है, और चाहे तो तू खुद शीतल के मुंह से सुन ले।
3: ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? मैं बहुत देर से पड़ोस के कमरे से यहाँ आंगन में होने वाली आप दोनों की बातें सुन रही थी। माँ, क्यों आप अपनी ही बेटी के सुखद जीवन में आग लगाने पर तुली हुई हो? क्यों अपनी बेटी को ससुराल में चैन से जीने नहीं देना चाहती हो?
1: अरे पहले तू खुद ही शीतल से पूछ ले कि वो ससुराल में किस तरह से रहती है। मैं तो कहती हूँ बेटी, अगर तुम्हें सचमुच में सुखी रहना है तो दामाद के साथ अलग रहने लग, तभी तू सुखी रहेगी।
3: माँ कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आप अपनी ही बेटी को गलत सलाह दे रही हैं। मैं कब से सुन रही हूँ, दीदी अपने ससुराल वालों की तारीफ भी करती है तो आप जबरदस्ती उनके किसी न किसी व्यवहार में कोई न कोई कमी बताकर उसे दोषी सिद्ध करने पर तुली हुई दिखाई देती हैं।
1: अब मैं अपने मन से तो कुछ नहीं कह रही हूँ, जो शीतल से सुन रही हूँ उसी आधार पर तो कुछ कह रही हूँ ना।
3: शीतल दीदी जो भी कह रही हैं, आप उसको अपने गंदे विचार से दबाव डालकर अपने नजरिए से वही दिखा और बता रही हैं जो आप देख रही हैं और जो आप चाहती हैं।
2: पायल रहने दे, शायद माँ ठीक कहती हैं।
3: क्या ठीक कह रही हैं दीदी, मैं जब से सुन रही हूँ माँ कभी तुम्हारी सास की बुराई करती है, कभी तुम्हारे देवर की बुराई करती है, तो कभी जेठ जेठानी की। वो तो मैं आ गई, वरना इन्होंने तो तुम्हारे संत जैसे ससुर को भी नहीं छोड़ना था। ये उनकी उनकी भी बुराई करने में कोई कोताही नहीं बरतती।
1: देख पायल, अब मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी बेटी के ससुराल वालों के विरुद्ध अपनी ही बेटी के कान भरूंगी।
4: मैं भी बहुत देर से तुम्हारी बुराई पुराण सुन रहा था सावित्री। शाबाश पायल बेटी, तुमने अपनी माँ को उसकी गलती बताई। मेरे तो समझ में नहीं आता सावित्री कि तुम अपनी ही बेटी के कान भरकर उसके सुखद भविष्य में क्यों खलल पैदा कर रही
1: हो। अरे मैं तो बस
4: तुम्हारे जैसी माएँ ही अपनी बेटियों के ससुराल और परिवार में दखल देती हैं और उनके अच्छे भले चलते शांत जीवन के पानी में बुराई का कंकर फेंक कर हलचल पैदा कर देती हैं, और जब प्रतिक्रिया स्वरूप बेटी के ससुराल से कोई कुछ कहता है तो तुम जैसी माँ ही फिर कहती हैं कि देखा मैंने तो पहले ही कहा था तेरे ससुराल वाले ऐसे ही हैं।
2: पापा माँ तो ऐसे ही कह रही थी, आप भी ना।
4: इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसे नहीं कही जाती बेटी। माँ अगर सचमुच में अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हैं तो उन्हें अपनी बेटियों को अपने ससुराल में तनकर रहने की शिक्षा देने और कहीं अलग गृहस्थी बसाने की सलाह देने के बजाय ससुराल में ही सबसे मिलकर रहने और हमेशा वहीं संयुक्त परिवार में ही रहने की शिक्षा देनी चाहिए।
1: मैं आपकी बात समझ गई। दरअसल मैं अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी ना कि अपनी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचने की तमीज़ भी खो बैठी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए।
4: इसमें माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं है, और अगर माफ़ी मांगनी ही है तो अपनी बेटी से माफ़ी मांगो। उसे शिक्षा देनी ही है तो सास ससुर जेठ जेठानी का आदर करने की शिक्षा दो, देवर ननंद देवरानी को प्यार से साथ में रखने की सीख दो।
3: यही तो मैं भी चाहती हूँ पापा।
1: ठीक है, अब मैं भी वही करूँगी जो तुम सब चाहते हो। मैं तो सचमुच तुझे सुखी देखना चाहती हूँ शीतल बेटी।
2: हाँ माँ।
0: बेटी का सुख। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अपर्णा सिंह, अंतरा करवड़े, आस्था उपमन्यु और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे।

0: जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद, माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं।
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवां भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रीस्त दया कर,
1: ख्रीस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रीस्त हमारी सुन,
1: ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रीस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

0: मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनु

0: वे कहते हैं कि ईसा को यरूशलेम जाना होगा और नेताओं, महायाजकों और शास्त्रों की ओर से बहुत दुख उठाना एवं मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। संत पापा ने कहा, वे जो कहते हैं वह एक जीतने वाले और ताकतवर मसीहा के शिष्यों की उम्मीदों से बहुत अलग है, जिनकी मदद से वे अपने दुश्मनों को हराएंगे और रौंदेंगे। उनके साथ बिताए गए समय के दौरान भी वे उनके कई कामों और बातों से आश्चर्यचकित थे, फिर भी यह नया संदेश उन सबसे बढ़कर है, खासकर पेत्रुस का अपनी असहमति जाहिर करना और यीशु को डांटते हुए कहना, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ऐसा आपके साथ कभी नहीं होना चाहिए। कुछ ही समय पहले पेत्रुस ने यीशु में मसीहा जीवित ईश्वर के पुत्र को पहचाना था, लेकिन अब वह जो सुनता है उससे हैरान हो जाता है और शायद निराश होकर उन्हें डांटता है, जो उसके अभी अभी किए गए विश्वास के सुंदर दावे से बिल्कुल विपरीत है। यह ऐसा लगता है जैसे वह कह रहा हो, हाँ मुझे विश्वास है कि आप मसीहा हैं, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं बचती। उनका जोश निश्चय ही सच्चे प्यार से प्रेरित था, लेकिन फिर भी यह हमें सोचने के लिए मजबूर करता है।
1: Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
0: वास्तव में हमारे लिए भी ईश्वर के तरीकों को समझना और मानना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब वे हमारे तरीकों से बहुत दूर हों। तब विश्वास के सभी सोच के खिलाफ प्रलोभन आता है कि प्रभु ही गलत है, या इससे भी बुरा कि वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं या उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। इस अनिश्चितता का सामना करते हुए पेत्रुस अपनी जल्दबाजी में भी दो महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। संत पापा ने कहा,
1: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore.
0: पहला यह है कि ऐसे पलों में भी प्रभु के साथ अपनी बातचीत बंद ना करें। इसके बजाय हमें पूरे भरोसे के साथ उन्हें अपनी कठिनाइयां बतानी चाहिए और पूछना चाहिए कि वे हमसे क्या चाहते हैं। दूसरा, कभी भी ईश्वर के काम का न्याय ना करें, बल्कि वे नम्रता और प्रार्थना के साथ सुने कि वे अपने कामों से हमें क्या दिखा रहे हैं, भले ही वे हमारी उम्मीदों के अनुसार ना हो। संत पापा ने कहा कि इसमें पहले प्रेरित की महानता भी साफ दिखती है। यीशु जवाब देते हैं, हट जा शैतान, और उन्हें तथा दूसरे शिष्यों को समझाते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए उन्हें खुद का त्याग करना होगा, अपना क्रूस उठाना होगा और उनके पीछे चलना होगा। संत पापा ने कहा, संत पेत्रुस यही करेंगे। उनकी बात सुनने के बाद वे चुनौती स्वीकार करेंगे और मसीह के शब्दों के प्रति वफादार रहेंगे जीवन भर, यहाँ तक कि शहादत में भी, जिन्हें उन्होंने अपने उद्धारक के रूप में पहचाना है। इसलिए संत पापा ने कहा, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी अपने विश्वास और प्रार्थना में संत पेत्रुस जैसे ही निष्ठा रखें और यीशु को विनम्रता से वही बताएं जो हम सच में महसूस करते हैं, उस समय भी जब हमारा दिल उलझन में हो। साथ ही हम भी पेत्रुस की तरह विनम्र बने और हमारी उम्मीदों से बढ़कर उसे स्वीकार करें जो वे हमसे मांगते हैं। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा,
1: चायुता मरिया che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù.
0: माता मरियम हमारी मदद करें, जो अपने बेटे यीशु के क्रूस के नीचे भी ईश्वर की योजना के प्रति आज्ञाकारी थीं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini, Nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce Ancilla Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। सबसे पहले उन्होंने हैती में नरसंहार की घटना पर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा,
1: Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kinshasa.
0: प्यारे भाइयों एवं

0: से कैंसकोफ में हुए भयंकर नरसंहार की दुखद खबर आई है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है और कुछ लोगों का अपहरण कर लिया गया है। मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और सभी बंधकों को तुरंत रिहा करने का आग्रह करता हूँ। मैं सभी जिम्मेदार लोगों से दिल से अपील करता हूँ कि वे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और हर तरह की हिंसा को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करें। उसके बाद नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा,
1: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
0: मैं नेपाल एवं तिब्बत में भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूँ। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जो घायल और लापता हैं, उनके परिवारों और राहत कार्य में लगे लोगों के लिए भी। प्रभु सभी की चिंता एवं दुख कम करें और लोगों को आवश्यक मदद मिल सके। तत्पश्चात संत पापा ने विश्व में शांति के लिए प्रार्थना जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा,
1: Continuiamo a pregare per la pace.
0: आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करते रहें। फिर संत अगस्तीन के शब्दों को याद करते हुए उन्होंने कहा, शांति उस चमत्कारी रोटी की तरह है जो शिष्यों के हाथों में उगती थी जब वे उसे तोड़ते और बांटते थे। दुनिया भर में उन लोगों की संख्या बढ़े जो हिम्मत से शांति की रोटी तोड़ते और बांटते हैं, फूट को दूर करते हैं, न्याय को बढ़ावा देते, क्षमाशीलता का अभ्यास करते और सबकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद संत पापा ने याद दिलाया कि मंगलवार को हम सृष्टि की देखभाल के लिए प्रार्थना दिवस मनाते हैं। यह सृष्टि के मौसम की शुरुआत है जिसे विभिन्न ख्रिस्त समुदाय मनाते हैं, जिसके इस साल की विषय वस्तु है जीवित जल। पोप ने कहा, जैसा कि मैंने इस दिन के संदेश को याद दिलाया, हमारे आम घर की देखभाल के लिए दिल बदलने की जरूरत है, ताकि जो चीज़ें तबाही लाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं उन्हें जीवन की ओर मोड़ा जा सके। मैं सभी को प्रार्थना एवं काम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि हम ईश्वर की शांति के जीवन जल के रास्ते बन सकें और अपनी घायल दुनिया को तरोताज़ा कर सकें। और अंत में संत पापा ने कस्तल गंदोल्फो के विश्वासियों एवं विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया।
1: Saluto tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini di vari paesi.
0: उन्होंने पुलिस एवं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कस्तल गंदोल्फो में अपने ग्रीष्म अवकाश के दौरान उनकी मदद की, साथ ही तीर्थयात्रियों से उनकी मुलाकात को सुगम बनाया। पोप ने कहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तथा उन्होंने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण से देवदूत प्रार्थना में भाग लेने वाले विश्वासियों का भी अभिवादन किया एवं सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: E a tutti, auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो में हैं। उन्होंने शनिवार 29 अगस्त की शाम को कास्टेल गंडोल्फो की झील की माता मरियम गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता की। फिर अल्बानो झील पर झील की माता मरियम के पारंपरिक जुलूस में भाग लिया। मिसा के दौरान अपने प्रवचन में संत पापा ने सुसमाचार में यीशु के पानी पर चलने की कहानी पर चिंतन करते हुए विश्वासियों को दुख, हिंसा और बंटवारे से भरी दुनिया की उल्टी हवाओं के बीच विश्वास में मजबूत रहने के लिए हिम्मत दी। अपने प्रवचन में संत पापा ने गलील झील के बारे में चर्चा की, जहां तूफान के बीच यीशु पानी पर चलते हैं और हमें विश्वास रखने का आग्रह करते हैं। संत पापा ने जो प्रतिबद्धता व्यक्त की, उससे कठिनाइयों का सामना करने पर निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जुलूस स्वयं इसकी याद दिलाती है, जिसमें यीशु के पानी पर चलने, अपने भयभीत शिष्यों तक पहुंचने और तूफान को शांत करने के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से किनारे पर वापस लाने के चमत्कार को दर्शाया गया है। संत पापा ने याद दिलाया, ठीक उसी समय जब वे विपरीत हवाओं के कारण बहुत अधिक डरे हुए थे, प्रभु ने उनसे विश्वास करने, प्रार्थना करने का आग्रह किया, ताकि उन्हें शांति मिल सके और उनके साथ मिलकर वांछित गंतव्य की ओर बढ़ते रहें। संत पापा ने बताया कि बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी तरह से मेलजोल के आदर्श को अपनाना, वही है जो यीशु हमें सुसमाचार में सिखाते हैं। संत पापा ने पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जाने वाले आसान इशारों के महत्व पर भी बातें की, जो विश्वास और भक्ति को नया करने का एक असरदार तरीका है। उन्होंने छोटे से स्थानीय समुदाय की देखभाल पर जोर दिया, जो पूरी कलीसिया को दिखाने के लिए पूरी गंभीरता से एकत्रित होती है। एक शरीर प्रार्थना में, भावनाओं में, इरादों में, हमारे एक साथ होने के व्यवस्थित और एक मत विकास में, उन्होंने कहा। इसलिए आइए हम आज रात यीशु और मरियम, माँ और बेटे के करीब जाएं, ताकि हम एक होकर न केवल झील पर बल्कि दुनिया के सभी रातों में ईश्वर की मौजूदगी की एक भरोसा दिलाने वाली झलक और उनके प्यार की एक जबरदस्त गूंज बन सकें, जो हमें प्यार करने के लिए बुलाती है। पवित्र मिसा समाप्त होने के बाद संत पापा लियो 14वें और विश्वासीगण गिरजाघर से निकले और झील की माता मरियम की प्रतिमा को जुलूस में ट्रापिकाना तट तक ले गए। संत पापा लियो 14वें इतिहास में पहले परमाध्यक्ष बने जिन्होंने अल्बानो झील पर जुलूस में भाग लिया और अल्बानो झील पर लुंगो लागो कास्टेल गंडोल्फो एसोसिएशन की नाव फाल्को पर झील की माता मरियम की मूर्ति के सामने संत पापा ने करीब 25 मिनट तक समय बिताया। झील के किनारे संत पापा ने विश्वासियों के साथ प्रार्थना की। संत पापा ने कलीसिया और दुनिया के लोगों को माता मरियम को समर्पित किया, जिसे उन्होंने सुनने वाली और सेवा करने वाली महिला के रूप में वर्णित किया। संत पापा ने कहा कि माता मरिया बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों, परिवारों, नौजवानों और उन सभी लोगों का खास ध्यान रखे जो अकेलेपन में रहते हैं। उन लोगों का साथ दे जिनकी समाज में कोई बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि वे हमेशा न्याय, आज़ादी, हर इंसान की गरिमा और सबकी भलाई को बढ़ावा दे सकें। संत पापा ने उन लोगों को भी याद किया जो झील के आसपास रहते और काम करते हैं और जो शांति की तलाश में वहां आते हैं। उधर नार्वे के स्वालबार्ड में कैथोलिक धर्माध्यक्ष के पहली बार पवित्र मिसा मनाने के 100 साल बाद कैथोलिक मौजूदगी और प्रेरितिक देखभाल के इन 100 सालों के लिए धन्यवाद देने हेतु विश्वासी लांग इयन बेन में एकत्रित हुए। टोनहैम के धर्माध्यक्ष एरिक वार्डन ने स्वालबार्ड गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता की। नार्वे के लुथरन कलीसिया के प्रतिनिधियों ने भी इस पवित्र मिसा समारोह में भाग लिया। अपने प्रवचन में धर्माध्यक्ष वार्डन ने इंसानी कमजोरी के बारे में क्रिस्तीय समझ को दिखाने के लिए स्वालबार्ड के मुश्किल नज़ारों और इतिहास का जिक्र किया।
उन्होंने याद किया कि एक सदी पहले स्वालबार्ड पहुंचना कितना अलग रहा होगा, जब समुद्र के रास्ते एक मुश्किल सफर के बाद, यह जानते हुए कि लगभग 900 किलोमीटर बर्फीला पानी इस आइलैंड को नॉर्वे के मुख्य जमीन से अलग करता था। आज उन्होंने मजाक में कहा, पर्यटक आज आराम से प्लेन से आते हैं और उनके पास 5G फोन होता है। हर वह चीज जो हमें कहीं और भटकाती है, वह यहाँ भी हमारे साथ आती है। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक समाज ने अक्सर टेक्नोलॉजी की तरक्की और इंसानी कंट्रोल में यकीन करके कमजोरी को खत्म करने की कोशिश की है, फिर भी इंसानियत अब भी नए स्तर की अनिश्चितता के साथ जी रही है। उन्होंने कहा, हमें और ज्यादा आभासी कल्पना की जरूरत नहीं है, हमें असलियत की सही समझ की जरूरत है। उन्होंने बदलते माहौल और पिघलती बर्फ की ओर इशारा करते हुए कहा कि स्वालबार्ड खुद यह असलियत सिखा सकता है। उन्होंने कहा कि आर्कटिक का विशाल नजारा इंसानियत को दुनिया और ईश्वर के सामने उसकी छोटी सोच को भी याद दिलाता है। यीशु के बलिदान को स्वालबार्ड तक सही मायने में पहुंचाने के लिए धर्माध्यक्ष जोहानस ओलाउस स्मिट 1926 में स्वालबार्ड गए थे और द्वीप समूह पर पहला कैथोलिक मिस्सा समारोह मनाया। और नेपाल में आए भूकंप और बाढ़ से मौतों का आंकड़ा अब 900 से ज्यादा हो गया है। पानी में डूबी सुरंगों, टूटी सड़कों और अलग थलग पड़े गांवों के बीच नेपाल में उन लोगों की तलाश जारी है जो बाढ़ से हुई तबाही में शायद बच गए हों। करीब 4,200 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि आपातकाल एक नए बड़े स्तर पर फैल रही है। जिन इलाकों में पानी नहीं है, जहां पीने का पानी कम है और खराब या खराब स्रोत से बीमारी फैलने का डर है। कहा जा रहा है कि अभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की टनल में लगभग 1,000 लोग फंसे हुए हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: पोप लियो चौथवें ने रविवार 30 अगस्त को भक्त समुदाय के साथ कस्तेल गंदोल्फो के प्रांगण में देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर दिन के सुसमाचार पाठ पर चिंतन किया। पोप ने कहा,
1: cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात एवं शुभ रविवार।
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente.
0: आज का सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि कैसे यीशु अपने चेलों को अपने आने वाले दुख का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि ईसा को यरूशलेम जाना होगा और नेताओं, महायाजकों और शास्त्रों की ओर से बहुत दुख उठाना एवं मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। संत पापा ने कहा, वे जो कहते हैं वह एक जीतने वाले और ताकतवर मसीहा के शिष्यों की उम्मीदों से बहुत अलग है, जिनकी मदद से वे अपने दुश्मनों को हराएंगे और रौंदेंगे। उनके साथ बिताए गए समय के दौरान भी वे उनके कई कामों और बातों से आश्चर्यचकित थे, फिर भी यह नया संदेश उन सबसे बढ़कर है, खासकर पेत्रुस का अपनी असहमति जाहिर करना और येसु को डांटते हुए कहना, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ऐसा आपके साथ कभी नहीं होना चाहिए। कुछ ही समय पहले पेत्रुस ने येसु में मसीहा जीवित ईश्वर के पुत्र को पहचाना था, लेकिन अब वह जो सुनता है उससे हैरान हो जाता है और शायद निराश होकर उन्हें डांटता है, जो उसके अभी अभी किए गए विश्वास के सुंदर दावे से बिल्कुल विपरीत है। यह ऐसा लगता है जैसे वह कह रहा हो, हाँ मुझे विश्वास है कि आप मसीहा हैं, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं बचती। उनका जोश निश्चय ही सच्चे प्यार से प्रेरित था, लेकिन फिर भी यह हमें सोचने के लिए मजबूर करता है।
1: Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
0: वास्तव में हमारे लिए भी ईश्वर के तरीकों को समझना और मानना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब वे हमारे तरीकों से बहुत दूर हों। तब विश्वास के सभी सोच के खिलाफ प्रलोभन आता है कि प्रभु ही गलत हैं, या इससे भी बुरा कि वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं या उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। इस अनिश्चितता का सामना करते हुए पेत्रुस अपनी जल्दबाजी में भी दो महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। संत पापा ने कहा,
1: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore.
0: पहला यह है कि ऐसे पलों में भी प्रभु के साथ अपनी बातचीत बंद ना करें। इसके बजाय हमें पूरे भरोसे के साथ उन्हें अपनी कठिनाइयां बतानी चाहिए और पूछना चाहिए कि वे हमसे क्या चाहते हैं। दूसरा, कभी भी ईश्वर के काम का न्याय ना करें, बल्कि वे नम्रता और प्रार्थना के साथ सुने कि वे अपने कामों से हमें क्या दिखा रहे हैं, भले ही वे हमारी उम्मीदों के अनुसार ना हो। संत पापा ने कहा कि इसमें पहले प्रेरित की महानता भी साफ दिखती है। यीशु जवाब देते हैं, हट जा शैतान, और उन्हें तथा दूसरे शिष्यों को समझाते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए उन्हें खुद का त्याग करना होगा, अपना क्रूस उठाना होगा और उनके पीछे चलना होगा। संत पापा ने कहा, संत पेत्रुस यही करेंगे। उनकी बात सुनने के बाद वे चुनौती स्वीकार करेंगे और मसीह के शब्दों के प्रति वफादार रहेंगे जीवन भर, यहाँ तक कि शहादत में भी, जिन्हें उन्होंने अपने उद्धारक के रूप में पहचाना है। इसलिए संत पापा ने कहा, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी अपने विश्वास और प्रार्थना में संत पेत्रुस जैसी ही निष्ठा रखें और यीशु को विनम्रता से वही बताएं जो हम सच में महसूस करते हैं, उस समय भी जब हमारा दिल उलझन में हो। साथ ही हम भी पेत्रुस की तरह विनम्र बने और हमारी उम्मीदों से बढ़कर उसे स्वीकार करें जो वे हमसे मांगते हैं। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा,
1: चायुता मरिया che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù.
0: माता मरियम हमारी मदद करें, जो अपने बेटे यीशु के क्रूस के नीचे भी ईश्वर की योजना के प्रति आज्ञाकारी थीं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। सबसे पहले उन्होंने हैती में नरसंहार की घटना पर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा,
1: हैती जुंगनो नोटिचे ड्रामाटिके डेल ग्रावे मासाक्रो परपेट्रातो अ केंस्कोफ।
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, हैती से केंस्कोफ में हुए भयंकर नरसंहार की दुखद खबर आई है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है और कुछ लोगों का अपहरण कर लिया गया है। मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी बंधकों को तुरंत रिहा करने का आग्रह करता हूं। मैं सभी जिम्मेदार लोगों से दिल से अपील करता हूं कि वे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और हर तरह की हिंसा को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करें। उसके बाद नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा,
1: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
0: मैं नेपाल एवं तिब्बत में भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूँ। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जो घायल और लापता हैं, उनके परिवारों और राहत कार्य में लगे लोगों के लिए भी। प्रभु सभी की चिंता एवं दुख कम करें और लोगों को आवश्यक मदद मिल सके। तत्पश्चात संत पापा ने विश्व में शांति के लिए प्रार्थना जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा,
1: Continuiamo a pregare per la pace.
0: आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करते रहें। फिर संत अगस्टीन के शब्दों को याद करते हुए उन्होंने कहा, शांति उस चमत्कारी रोटी की तरह है जो शिष्यों के हाथों में उगती थी जब वे उसे तोड़ते और बांटते थे। दुनिया भर में उन लोगों की संख्या बढ़े जो हिम्मत से शांति की रोटी तोड़ते और बांटते हैं, फूट को दूर करते हैं, न्याय को बढ़ावा देते, क्षमाशीलता का अभ्यास करते और सबकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद संत पापा ने याद दिलाया कि मंगलवार को हम सृष्टि की देखभाल के लिए प्रार्थना दिवस मनाते हैं। यह सृष्टि के मौसम की शुरुआत है जिसे विभिन्न ख्रिस्त समुदाय मनाते हैं, जिसके इस साल की विषय वस्तु है जीवित जल। पोप ने कहा, जैसा कि मैंने इस दिन के संदेश को याद दिलाया, हमारे आम घर की देखभाल के लिए दिल बदलने की जरूरत है ताकि जो चीज़ें तबाही लाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं उन्हें जीवन की ओर मोड़ा जा सके। मैं सभी को प्रार्थना एवं काम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ ताकि हम ईश्वर की शांति के जीवन जल के रास्ते बन सकें और अपनी घायल दुनिया को तरोताजा कर सकें। और अंत में संत पापा ने कस्तर गंदोल्फो के विश्वासियों एवं विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया।
1: Saluto tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini di vari paesi.
0: उन्होंने पुलिस एवं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कस्तर गंदोल्फो में अपने ग्रीष्मावकाश के दौरान उनकी मदद की, साथ ही तीर्थयात्रियों से उनकी मुलाकात को सुगम बनाया। पोप ने कहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तथा उन्होंने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण से देवदूत प्रार्थना में भाग लेने वाले विश्वासियों का भी अभिवादन किया एवं सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: E a tutti auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो में हैं। उन्होंने शनिवार 29 अगस्त की शाम को कास्टेल गंडोल्फो की झील की माता मरियम गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता की। फिर अल्बानो झील पर झील की माता मरियम के पारंपरिक जुलूस में भाग लिया। मिसा के दौरान अपने प्रवचन में संत पापा ने सुसमाचार में येसु के पानी पर चलने की कहानी पर चिंतन करते हुए विश्वासियों को दुख, हिंसा और बंटवारे से भरी दुनिया की उल्टी हवाओं के बीच विश्वास में मजबूत रहने के लिए हिम्मत दी। अपने प्रवचन में संत पापा ने गलील झील के बारे में चर्चा की, जहां तूफान के बीच येसु पानी पर चलते हैं और हमें विश्वास रखने का आग्रह करते हैं। संत पापा ने जो प्रतिबद्धता व्यक्त की, उससे कठिनाइयों का सामना करने पर निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जुलूस स्वयं इसकी याद दिलाती है, जिसमें येसु के पानी पर चलने, अपने भयभीत शिष्यों तक पहुंचने और तूफान को शांत करने के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से किनारे पर वापस लाने के चमत्कार को दर्शाया गया है। संत पापा ने याद दिलाया, ठीक उसी समय जब वे विपरीत हवाओं के कारण बहुत अधिक डरे हुए थे, प्रभु ने उनसे विश्वास करने, प्रार्थना करने का आग्रह किया, ताकि उन्हें शांति मिल सके और उनके साथ मिलकर वांछित गंतव्य की ओर बढ़ते रहें। संत पापा ने बताया कि बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी तरह से मेलजोल के आदर्श को अपनाना, वही है जो येसु हमें सुसमाचार में सिखाते हैं। संत पापा ने पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जाने वाले आसान इशारों के महत्व पर भी बातें की, जो विश्वास और भक्ति को नया करने का एक असरदार तरीका है। उन्होंने छोटे से स्थानीय समुदाय की देखभाल पर जोर दिया, जो पूरी कलीसिया को दिखाने के लिए पूरी गंभीरता से एकत्रित होती है। एक शरीर प्रार्थना में, भावनाओं में, इरादों में, हमारे एक साथ होने के व्यवस्थित और एक मत विकास में, उन्होंने कहा। इसलिए आइए हम आज रात येसु और मरियम, माँ और बेटे के करीब जाएं, ताकि हम एक होकर न केवल झील पर बल्कि दुनिया के सभी रातों में ईश्वर की मौजूदगी की एक भरोसा दिलाने वाली झलक और उनके प्यार की एक जबरदस्त गूंज बन सकें, जो हमें प्यार करने के लिए बुलाती है। पौत्र मिसा समाप्त होने के बाद संत पापा लियो 14वें और विश्वासीगण गिरजाघर से निकले और झील की माता मरियम की प्रतिमा को जुलूस में ट्रापिकाना तट तक ले गए। संत पापा लियो 14वें इतिहास में पहले परमाध्यक्ष बने जिन्होंने अल्बानो झील पर जुलूस में भाग लिया और अल्बानो झील पर लुंगो लागो कास्टेल गंडोल्फो एसोसिएशन की नाव फाल्को पर झील की माता मरियम की मूर्ति के सामने संत पापा ने करीब 25 मिनट तक समय बिताया। झील के किनारे संत पापा ने विश्वासियों के साथ प्रार्थना की। संत पापा ने कलीसिया और दुनिया के लोगों को माता मरियम को समर्पित किया, जिसे उन्होंने सुनने वाली और सेवा करने वाली महिला के रूप में वर्णित किया। संत पापा ने कहा कि माता मरिया बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों, परिवारों, नौजवानों और उन सभी लोगों का खास ध्यान रखे जो अकेलेपन में रहते हैं। उन लोगों का साथ दे जिनकी समाज में कोई बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि वे हमेशा न्याय, आज़ादी, हर इंसान की गरिमा और सबकी भलाई को बढ़ावा दे सकें। संत पापा ने उन लोगों को भी याद किया जो झील के आसपास रहते और काम करते हैं और जो शांति की तलाश में वहां आते हैं। उधर नार्वे के स्वालबार्ड में कैथोलिक धर्माध्यक्ष के पहली बार पवित्र मिसा मनाने के 100 साल बाद कैथोलिक मौजूदगी और प्रेरितिक देखभाल के इन 100 सालों के लिए धन्यवाद देने हेतु विश्वासी लांग इयन बेन में एकत्रित हुए। टोनहैम के धर्माध्यक्ष एरिक वार्डन ने स्वालबार्ड गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता की। नार्वे के लुथरन कलीसिया के प्रतिनिधियों ने भी इस पवित्र मिसा समारोह में भाग लिया। अपने प्रवचन में धर्माध्यक्ष वार्डन ने इंसानी कमजोरी के बारे में क्रिस्तीय समझ को दिखाने के लिए स्वालबार्ड के मुश्किल नजारों और इतिहास का जिक्र किया।
उन्होंने याद किया कि एक सदी पहले स्वालबार्ड पहुंचना कितना अलग रहा होगा, जब समुद्र के रास्ते एक मुश्किल सफर के बाद यह जानते हुए कि लगभग 900 किलोमीटर बर्फीला पानी इस आइलैंड को नॉर्वे के मुख्य जमीन से अलग करता था। आज उन्होंने मजाक में कहा, पर्यटक आज आराम से प्लेन से आते हैं और उनके पास 5G फोन होता है। हर वह चीज जो हमें कहीं और भटकाती है, वह यहाँ भी हमारे साथ आती है। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक समाज ने अक्सर टेक्नोलॉजी की तरक्की और इंसानी कंट्रोल में यकीन करके कमजोरी को खत्म करने की कोशिश की है, फिर भी इंसानियत अब भी नए स्तर की अनिश्चितता के साथ जी रही है। उन्होंने कहा, हमें और ज्यादा आभासी कल्पना की जरूरत नहीं है, हमें असलियत की सही समझ की जरूरत है। उन्होंने बदलते माहौल और पिघलती बर्फ की ओर इशारा करते हुए कहा कि स्वालबार्ड खुद यह असलियत सिखा सकता है। उन्होंने कहा कि आर्कटिक का विशाल नजारा इंसानियत को दुनिया और ईश्वर के सामने उसकी छोटी सोच को भी याद दिलाता है। यीशु के बलिदान को स्वालबार्ड तक सही मायने में पहुंचाने के लिए धर्माध्यक्ष जोहानस ओलाउस स्मिथ 1926 में स्वालबार्ड गए थे और द्वीप समूह पर पहला कैथोलिक मिस्सा समारोह मनाया। और नेपाल में आए भूकंप और बाढ़ से मौतों का आंकड़ा अब 900 से ज्यादा हो गया है। पानी में डूबी सुरंगों, टूटी सड़कों और अलग थलग पड़े गांवों के बीच नेपाल में उन लोगों की तलाश जारी है जो बाढ़ से हुई तबाही में शायद बच गए हों। करीब 4,200 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि आपातकाल एक नए बड़े स्तर पर फैल रही है। जिन इलाकों में पानी नहीं है, जहां पीने का पानी कम है और खराब या खराब स्रोत से बीमारी फैलने का डर है। कहा जा रहा है कि अभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की टनल में लगभग 1,000 लोग फंसे हुए हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।